देख मान लो कोरोना नाइन कंपनी ने एंड्रॉइड लिबरार सिर हो तो इरेने मा कहते नहीं है मुझे रहो लो की रहो सी फैमिली को सीख नहीं है और ये लोग कहते हैं शर्मा लिली भाई ये ओइन क्या लंग प्रोग्राम का लंग मुर है गेस्ट टू रिहाइड लिबरार डीली हम उत खबे लो मरीज ये और शुरू अन्य ला रहे हैं Nabi hau belum mari selalu nafati hatu hau ni kalan dia kalang solok i benvin udah lagi datan. Ba malu ko vinti seru tu nabi makorja masih istilah i kari kau mention anarang ida ba ida. I orja mang kompanya lagi tenye program karang kalang murah karek i bona itu beta bocir hatu Nah, karena kita informa dari datang bahwa Vinti Sirohutu kata kita ni program Kalamura kanesan program ane be maka dedikatur ya program ane be maka ni masang i program kalau murak ne i vokali ba i like komentar we studio i nomo toka musika sira ya studio i karek informasi importante rumah iya itu bela parti laba malu lilo iya kala ini ne nebe o vinti siro tu kita lua mana la mensaje mai lilo iya Facebook Radio Liberade Dili nebe mengkorjang halo la live nomo si TikTok Radio Liberade Dili orjang halo la live iya kala ini ne balam kar katu mana mensaje mai kar katu live vinci rutine komentar via studio time o vinci rutine nara ia radio ah ai bele det us musica favorito